गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं, अपने आप को गुणी समझकर कीर्तन ना कर, मुझ में गुण है। हाँ, मुझे याद है, एक बार मैं वैंकूवर बाहर गया तो एक रागी जत्था आया, वो थे रबाबी। अब वो रबाबी लोग जो होते हैं वो तो कहते हैं जब उनका बच्चा रोता है तो वो भी सुर में रोता है। भाई मर्दाने के खानदान से रबाबी लोग, लेकिन इतना गुण परमात्मा ने दिया, लेकिन अहंकार आ गया कि हम लोगों के सिवा और कोई गा नहीं सकता। सत्य बलवंडे ने भी अहंकार किया था, हम ना कीर्तन करें तो कोई गुरु नानक को पूछने वाला थोड़ी था। तो वो कहने लगे हमारा कीर्तन उनके बाद में था, तो वो कहने लगे कोई है माई का लाल जो हमारे जैसा कोई शब्द पढ़ सके, जैसा हमने राग गाया कोई गा सके। तो हम पीछे बैठे, मैंने कहा भाई ये कीर्तन है, ये कोई दंगल थोड़ा ही है। एक बार प्यार से बोलिए, ये दंगल नहीं है, यहां कुश्ती नहीं होती। यहां तो जैसे जैसे इंसान में गुण भरते हैं वैसा वैसा इंसान नीचा होता है, निम्रता में आता है। जो यहां भी गुण गाकर अहंकारी हो गए तो फिर निम्रता कहां आएगी, बाहर दंगल में आएगी। यहां तो निम्रता सीखनी है, जितना जितना सेवा की गुरु अंगद देव जी ने उतनी निम्रता में भरते गए। जैसे जैसे गुरसिखों ने गीत गाए वैसे वैसे निम्रता आती, नीचे होते चले गए।

किन्हीं किया परवृत पसारा, किन्हीं किया पूजा विस्थारा, किन्हीं निवल भुयंगम साधे मोहे दीन हर हर आराधे। तेरा भरोसा प्यारे आन न जाना वेसा, किन्हीं ग्रह

पंडित सासत सिमृत पढ़िया जोगी गोरख गोरख करिया मैं मूरख हर हर जप पढ़िया ना जाना क्या गत राम हमारी हर भजमन मेरे तर भव जल तू तारी सन्यासी विभूत लाए दे सवारी पर त्याग करी ब्रह्मचारी मैं मूरख हर आस तुम्हारी खत्री कर्म करे सूरत तन पावे सूद वैश पर कृत कमावे मैं मूरख हर नाम छड़ावे सब तेरी सृष्ट तू आप रया समाई।

महाराज कहंदे ने तपदा सड़दा वेखिया संसार, किसे नूं चैन नहीं किसे नूं शांति नहीं। इस करके जीवन पद निर्वाण इको सिमरी है, ना सिमरिए तां डिठा सब संसार, तो सुख ना नाम बिन, क्योंकि दूजी ना ही जाए किन विद धीरिए, और कोई तरीका ही नहीं धीरज आउण दा शांति आउण दा। ते भी दसदे ने कि नाम ना जपिया जीवन एवे तो जाएगा, तन तन होसी छार जाने कोई जान, ते जेड़े पासे लगा है रंग रूप रस बाद के करे प्राणिया, ते जेड़ा भुलिया रह गया इस पासे ओनू शांति नहीं, जिस भुलाए आप जिस कल नहीं जानिया। भागा वाले ने रंग रते निर्वाण सच्चा गा वही, ते कहंदे ने मैं ता आप तेरी शरण हां, नानक शरण द्वार जे तू भावे सच्चे पातशाह, तेनू जे चंगा लग जाए ते मैं ता आप तेरे दर तो यही मंगदा हां, कर कृपा मुझ साध संग दीजे। इस तरीके नाल ही कुछ मिल सकन वाला है।

कहीं बनिया बैठकर तिजोरी भर रहा है, वो अपने आनंद में बैठा है, मौज कर रहा है। कहीं अफीम की अफीम खा के अपने आनंद में बैठा है। बाबा जी कहते हैं सबको अपना अपना रंग प्यारा लगता है। हजूर कहते हैं

भूखे शेर को मांस मिल जाए, झपट पड़ता है। इसी तरह गुरु प्यारों को सत्संगत का आनंद मिले तो भागे हुए आते हैं। भूख है ना अंदर, शेर को मांस की भूख है, बहादुर को लड़ने की भूख है। बाबा जी कहते हैं कंजूस को पैसे की भूख है, वो जमा करता ही जाता है, चाहे बेटा ना हो औलाद ना ही हो, फिर भी उसे कंजूसी की आदत पड़ी। बाबा जी कहते हैं ऐसा ही भगवान के भक्तों को इस संगत का प्यार रंग, जहां जहां पर प्रभु ने लगा दिया वो वही

कर्म मल उतरे सच्चे के गुण गाय गुण गावत ते पुत्र समैल सच्चे के गुण गाय गुण गावत तेरी पुत्र समैल दिल सजाए हो मैं दुख पैद जन्म कर

बड़ा कुछ बनाया। हाली मन दे चाह भी पूरे ना होए, पर जद हुक्म आया तां छोड़ चलिया। एक दिहाड़े जो कुछ बनाया सी सारा कुछ एक दिन छड़ के तुर पिया। ना पत्नी दा ख्याल, ना बच्चियां दा, ना रिश्तेदारां दा, ना सजना मित्रां दा, कि आखरी वेले किसे नूं मिली लवां। नहीं, परमेश्वर दा हुक्म बड़ा डाढ़ा है। जद उहदा हुक्म आवे फिर किसे नूं मिलण दा समा नहीं मिलदा। हुक्म बड़ा डाढ़ा है। आया हुक्म पार ब्रह्म का, छोड़ चलिया एक दिहाड़े। हुक्म आया और एक दिन सब कुछ छड़ के इस दुनिया तू अपने प्यारियां नूं रोंदा कुरलांदा छड़ के तुर पिया।

अराज मिलक जोबन ग्रह शोभा रूपवंत जवानी जान वाला सब कुछ छड़ गया राज भाग जोबन जवानी ग्रह केंद्र ने कारण अपना कार शोभा सोना रूप सारा कुछ छड़ के एक दिन तुर पिया बहुत दर्ब हस्ती यार कोड़े लाल लाख बयानी हाथी कोड़े समय दी सवारी हर चीज एक दिन छड़ के जो बड़े चाह नाल बनाई एक दिन तुर पिया।

ने औरत भी पति नाल ही सोंदी है। जद तक पति जिंदा है आदर सारे देंदे ने, पति ना रवे ते दुनिया विच जीवन जीवना बड़ा औखा हो जांदा है।

बंके कहंदे ने पति नूं, जिन्हां दे पति मर गए, जिन्हां वापस नहीं आना। उन्हां औरतां दे बारे साहिब जी कहंदे ने, तिन क्यों रहण विहाणी, उन्हां दीआं रातां हुण किवें बीतन, क्यों औलाद किन्नी भी नेक होवे, रिश्तेदार किन्ने भी चंगे होण, पर पति दी थां कोई नहीं लै सकदा। साहिब जी बाणी विच बयान करदे ने, ਉਹ ਪਤਨੀ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਵੇ ਜਿਹਦਾ ਪਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

कदी हसो ना, क्यों? मौत एक सच्चाई है, जीवन झूठ है। असी लोग मौत नू भुला देने हैं, पर मौत इंसान नू कदी नहीं भुलदी। समय नाल ओ आके ले जांदी, क्योंकि ओदा हुक्म बड़ा डर है। पति ना रवे ते औरत दा जीवन कहो जे है, तन गुरु नानक साहब बाणी विच बयान करदे ने। औरत दे दर्द नू समझया, अपने आप नू फिर कहन लगे, ऐ परमेश्वर, ऐ अकाल पुरख, तू मेरा पति है। जिवें औरत दा जीवन पति तो बगैर कुछ नहीं, तू मेरा पति है, तेरे बगैर मेरा

सुंदर अखाड़े रण में जिते पवाड़े। हर इंसान यह चाहता है कि मैं किसी ना किसी ते हुक्म चलावा, मेरी हुकूमत होवे, दुनिया मैनू सलाम करे। इंसान लड़ाइया जितता है, तरक्या करता है, बड़ा कुछ बना भी लेंदा है। ए भी कहंदा है हों मारो हों बंदो छोड़ो मुख ते एव पबाड़े। मुख कहंदे ने मोन, मोतू ए भी कहंदा है मैं जिनू चाहवा ओनू मार सकदा, जिनू चाहवा ओनू छड़ सकदा। पर साहब जी कहंदे ने दुनिया ते हुक्म चलाण वाला कल भी सलाह करके सौंदा है, पर उदों ही पता लगदा है।

पर उपदेश कर गए किसी ने रोना नहीं क्योंकि रोण दा लाभ कोई नहीं। मत मैं पिछे कोई रोव सी सो मैं मूल ना पाया। रोना नहीं परमेश्वर दा कीर्तन करना है सिमरन करना है ताकि सिमरन सदका विछड़ी रूह नूं परमेश्वर अल्लाह दे चरणां विच जगह मिले। ए उपदेश कर गए ने पाए अगर कोई विछड़ जाए दुनिया ना त्यागना विराग विच पै के अपना शरीर ना गवा लेना दुनिया विच रहना दुनिया नूं नाशवान समझना है दुनिया दे काम भी सारे करने ने पर नाशवान समझ के किसे दा बुरा नहीं करना किस ना ठगी नहीं करनी जीवन उच्चा ते सुच्चा बताना है। गुरु साहिब जी कहंदे ने कर्म धर्म जुगत बहु करता करने हार ना जाने उपदेश करे आप ना कमावे तत शब्द ना पछाने नांगा आया नांगो जासी ज्यों हस्ती खाक शाने संत सज्जन सुनो सब मीता झूठा ए पसारा मेरी मेरी कर कर डूबे खप खप मोए गवारा गुरमिल नानक नाम ते आया साच नाम निस्तारा एक नाम ने निस्तारा करना है। अज दा ए कीर्तन आपां सुन के अपने मना विच ए धारिए एक दिन मरना है ताकि जीवन सफला करके जाइए।

मैं अनजान हां, मैनू तैरना नहीं आउंदा। तू कृपा करके जरा बांह तां फड़ा, मैं पार लंघ जावां। जिन्हां जिन्हां ने तेरी भगती कीती, जिन्हां जिन्हां ने तेरी आराधना कीती, जिन्हां जिन्हां ने तैनू ध्याया, तू मनुखां तू देवता।

चांदना चांदन आंगन प्रभ जियो अंतर चांदना। ऐ मनुख हृदय रूपी वेड़े विच परमाता परमात्मा रूपी नामदा दे तू चानना कर लवे, अज्ञानता रूपी हनेरा हमेशा हमेशा ले खत्म हो जाना है जे परमात्मा रूपी नामदा तू हृदय रूपी वेड़े विच चानना कर लवे। चांदना चांदन आंगन प्रभ जियो अंतर चांदना। आओ आपा मिरल के इन्हां तुकानों पढ़िए कोई रसना खाली ना।

आपे ही सब आप है प्यारा, आपे थाप उथापे, आपे वेख विगसदा प्यारा, कर चोज वेखे प्रभ आपे, आपे वन त्रण सबत है प्यारा, आपे गुरमुख जापे, जप मन हर हर नाम रस ध्रापे, अमृत नाम महारस मीठा, गुर शब्दी चख जापे, आपे तीरथ तुलहड़ा प्यारा, आप तरे प्रभ आपे, आपे जालो ली हर आपे, आप अभुल न भुलई प्यारा, दूजा अवर न जापे,

आपे धरती आप है राहत आप जमाए पिसावे आप पकावे आप भांडे दे परोसे आपे ही बैखावे आपे जल आपे दे छिंगा आपे चुली भरावे आपे संगत

कहूँ देवतान के दीवान में विराजमान, कहूँ दानवान को गुमान मत देते हो। कहूँ इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी से, कहूँ इंद्र पदवी छिपाए छीन लेते हो। कतहूँ विचार अविचार को विचारत हो, कहूँ निज नार पर नार के नकेत हो। कहूँ बेदरीत कहूँ तासों बपरीत, कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ।

कऊ शस्त्रधारी कऊ विद्या के बिचारी कऊ मारत आहारी कऊ नार के नकेत हो कहूं देव बानी कहूं सारधा भवानी कहूं मंगला मेड़ानी कहूं श्याम कहूं सेत हो।

कर रे भीखम शाह, जो जात दा मुसलमान है, पंजाब दी धरती दा रहण वाला, आज भीखम शाह जदों सुबह नमाज अदा करन लगा, भीखम शाह दे नाल सारे मुरीद भी सन, और जिस वेले पश्चिम वाल भीखम शाह नमाज पढ़न वास्ते खड़ा होया, ता भीखम शाह नू अदुती प्रकाश दे दर्शन होए, ता भीखम शाह ने सजदा पश्चिम वाल करन दी बजाय पूर्व वाल कीता। सारे मुरीद पुछन लगे, आ भीखम शाह जी, आज तक तुसी रोज इतनी उम्र बीत गई, सजदा पश्चिम वाल करके नमाज अदा करते हो, क्योंकि हर एक मुसलमान पश्चिम वाल सजदा करके नमाज अदा करता है, ते आज तुसी पूर्व वाल क्यों सजदा कीता? तां भीखम शाह कहन लगा, जिस खुदावंद नू मैं रोज पश्चिम वाल नमाज अदा करता सा, आज उसने पूर्व दे विच पटने शहर दे विच जन्म लिता है। सात सगत बोलो श्री। सारे मुरीद हैरान रह गए। भीखम शाह कहन लगा, हां जे मेरे ऊपर विश्वास नहीं तो फिर सारे चलो पटने दी धरती ते, किथे बिहार दी राजधानी पटना, किथे पंजाब पटियाले दे कोल रहन वाला भीखम शाह अपने मुरीदां नू लै के, उस वेले कोई रेल गड्डियां दे साधन नहीं सन, एक घुड़सवारी दे साधन होया करदे सन, अपने मुरीदां नू नाल लै के कितने दिन यात्रा करदा होया, जदों भीखम शाह उस स्थान ते आ पहुंचिया जिथे माता गुजरी दी कुख विचों धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह दे घर गोबिंद राय जी प्रगटे। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे दर्शन करन भीखम शाह पंजाब तो तुर के पटने दी धरती ते आया, और आके अरदास कीती के मेनू एक वरा उस बालक दे दर्शन कराओ जिसने तुहाडे घर जन्म लिता है। माता गुजरी धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे माता जी, माता गुजरी जी कहन लगे, अजे साडा जो ए लाल है बहुत छोटा है, ए बालक छोटा है, असी अजे 40 दिन भी नहीं होए, इनू बार नहीं कढ़ना, किते नजर ना लग जावे किसे दी। भीखम शाह कहन लगा, मैं ता होर कुछ नहीं मंगदा, तुहाडे कोलों पैसा नहीं मंगदा, कोई पदार्थ नहीं मंगदा, मैं ता इतनी दूरों चल के आया हां अपने मुरीदां दे नाल सिर्फ इस वास्ते के एक वरा मेनू गोबिंद राय जी दे दर्शन करा दे। सात सगत बोलो श्री। ता मामा कृपाल जी धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे मामा सन, माता गुजरी दे पाई, कहन लगे, चंगा तेनू दर्शन कराउंदे हां फकीर, आ भीखम शाह तेनू दर्शन कराउंदे हां, क्योंकि तेरे मन विच जो प्यार है वो सच्चा प्यार लगदा है। मामा कृपाल जी गोबिंद राय जी नू दुशाले विच लपेट के जदों लै के आए, दलीजां विच खड़ोते होए आख्या, इथों ही दर्शन कर लो, अजे गोबिंद राय जी नू दलीज विचों बार कढ़न दी आग्या नहीं मिली। दुशाले विच लपेटे होए जदों गोबिंद राय जी दे सोहणे मुखड़े दे दर्शन कीते भीखम शाह ने, तां भीखम शाह ने आख्या, तू ओही है जिसनू मैं रोज 5 वरां
नमाज पढ़ के मनाउंदा रहा, तू गोविंद राय उस अल्लाह दा रूप है। सात सगत बोलो श्री वेखन वालियां अखां जो मिल गईयां, जिसनू भी प्रभु दे वेखन दियां अखां प्राप्त हुईयां उसे नहीं पछाणियां। भीखम शाह डंडौत विच पै गया, जितने मुरीद नाल आए सन उना दे मन विच संसा आ गया, संकोच आ गया कि असी भीखम शाह दे मुरीद हां, लेकिन भीखम शाह ए की कर रहे, एक बालक अगे मथे टेक रहे। तां भीखम शाह कहन लगा अपने मुरीदां नूं के तुहाडे मन विच इस बालक दे वास्ते संसा आया तां मैं हुणे दूर कर देंदा। दो मिट्टी दी कुजियां मंगाईयां, भीखम शाह ने एक मिट्टी दी कुजी विच मिश्री पा के सज्जे हाथ विच रख लई, एक मिट्टी दी कुजी मिश्री पा के खब्बे हाथ विच रख ले, और अपने मन विच ए संकल्प कीता और मुरीदां नूं दस्या के भई असी ए दोनों कुजियां हाथ विच लै के बालक दे अगे खलोवांगे, जे तां इस बालक ने सज्जी कुजी उते हाथ रखिया तां असी समझांगे ए हिंदुआं वास्ते आया है, ते जे इसने खब्बी कुजी ते हाथ रखिया तां असी समझांगे ए मुसलमानां लई संसार ते आया है। जदों भीखम शाह दोनों कुजियां लै के गोबिंद राय जी दे अगे खलोता, धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह अजे बालक रूप विच सन, तां आप दा नाम गोबिंद राय सी। दोनों हथां दी कुजियां लै के जदों भीखम शाह खड़ोता गोबिंद राय जी दे अगे, तां गोबिंद राय जी ने दुशाले दे विचों अपने दोनों हथ बाहर कढ के उना दोनों मिट्टियां दी कुजियां उते रख देते। सात सगत बोलो श्री। भीखम शाह कहन लगा देखिया, मैं क्या सी ना ए बालक ए आम बालक नहीं है, ए तां खुदा दा नूर है, ए हिंदुआं वास्ते भी आया है, ए मुसलमानां लई भी आया, ए सब दा सांझा पीर है, ए सब दा सांझा गुरु है। तां हुण भीखम शाह और सारे मुरीद गोबिंद राय जी दे चरणां विच डंडौत विच पै गए ते की अरदास करदे हन, आओ असी भी करिए।

0: पहला जब भी वहां जाते माँ राजू बाबा आए पहले सन। मैं पूछा क्या लगे, बड़ी लंबी कथा माँ तनवान दी है।
1: हाँ सुन, हरनाक्ष नादा एक बड़ा शक्तिशाली राजा सी। उन्हें भगवान की भक्ति करके एक वरदान लिया कि ना वो दिने मरेगा ना राती मरेगा, ना अंदर मरेगा ना बाहर मरेगा, ना मनुख कोलो ना किसी जानवर कोलो। भगवान का वरदान लेके वो आप ही भगवान बन बैठा। उस राजे का एक पुत्र सी प्रहलाद। प्रहलाद ने अपने पिता नु भगवान मनन तो इनकार कर दिता। क्रोध विच आ के पिता ने पुत्र नु तपते थम नाल जफी पान का हुक्म दिता। ते प्रहलाद दे दिल विचों आवाज आई, पाले तत्ते थमा नु जफिया आपे तेनु राम रख लो। प्रहलाद ने थम नाल जफी पाली पर उदा वाल भी विंगा ना होया। गुस्से विच आके राजा ने तलवार कट ली ते थम पाट गया।
0: मैं भी प्रहलाद बनांगी मां, भगवान दा जाप करांगी।
2: मेरी मेहनत मेरी और आपको पुठे पार पड़े जा रहे। आज तो बात फिर करी ऐसी गल की थी

बहुत प्रसाद करावे, पाठ करावे, पर जे निंदा हो गई ओ भी किसी महापुरख दी, ते कोई भी कीता होया कर्म फली भूत नहीं।

अर्जन देव जी अपने शब्द विच फरमान कर देंगे, निंदक दी ए निशानी है जदों किसे दा भला हुंदा होया वेखेगा ते दुखी होएगा, ते जदों किसे दा बुरा हुंदा वेखेगा उदों